0: असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर
1: असंख अमर का जाहे जोर असंख गल बड़ हत्या कमाहे
0: असंख पापी पाप कर जाहे असंख कुड़ियार कुड़े फराहे
1: असंख

0: छुटै संसार।
1: जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच न कोए।
0: राती रुती तिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल।
1: जिस बे धरती थाप रखी धर्म साल, तिस बिच जी जुद के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत।
0: करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार।
1: जिथे सोहन पांच परवान, नजरी करम पवे निशान।
0: कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापे जाए।
1: धर्म खंड का इहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म।
0: केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश।
1: केते बरमे घाड़त घड़िए, रूप रंग के वेश।
0: केतिया करम भूमि मेर, केते केते तू उपदेश।
1: केते एंद चंद सूर, केते केते मंडल देश।
0: केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश।
1: केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद।
0: केतिया खानी केतिया बाणी, केते पात नरिंद।
1: केतिया सुरती सेव, केते नानक अंत न अंत।
0: ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोट आनंद।
1: धर्म खंड की बाणी रूप, तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप।
0: ताकि अगला कथिया न जाहे, जे को कहे पिछे पुछताए।
1: तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़े सुरा सिद्धा की सुध।
0: कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे हो न कोई होर।
1: तिथे जोत महाबल सूर, तिन में राम रहा।

0: नमो बाद बादे
1: अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ती बभूते
0: कलंकंग बनाने ने कलंकी स्वरूपे नमो राज वेश्वंग परम रूपे
1: नमो जोग जगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राज जगेश्वरंग परम वृद्धे
0: नमो शास्त्र पाणे नमो आसुर माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
1: अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जगेश्वरंग परम जुगते
0: नमो नत नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशो धर्मे
1: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहंग नमो पूप पूपे
0: नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगे नमो संग सनाने
1: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग
0: सदा सच दानंद सर्वंग प्रणासी अनुपे अरूपे समसन निवासी
1: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध करता अदो उर्दर गंग गंग अवग हरता
0: परंग परम परमेश्वर पुरुष पादंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग
1: अशेदी अपेदी अनामंग कामंग समस्तो पराजी समस्त सामंग तेरा जोर चाचरी शंद
0: जले हैं तले हैं अपीत हैं अपे हैं
1: प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुचंग पर्यात शंद
0: अगाध्य अबाध्य नंदी स्वरूपे नम सर माने समस्ती नदाने
1: नमस्वंग दाफे नमस्वंग परमाथे नमस्वंग गंजे नमस्वंग पंजे
0: नमस्त वंग अकाले नमस्त वंग अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे
1: नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महा महे
0: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे
1: नमो सर्व रोगे नमो सर्व पोके नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग
0: नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानिंग नमो सर्व मंत्रिंग नमो सर्व जंत्रिंग
1: नमो सर्व कृषंग नमो सर्व कृषंग नमो सर्व रंगे दर्भंगी अनंगे
0: नमो जीव जीविंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्त पर

0: कोट सिमरत प्राण शास्त्र ना आवे बहुचित मद पाठ संतव प्रसाद
1: गुणगान उदार महिमा अपार आसन अपांग उपमा अनांग
0: अनुपो प्रकाश निसिन अनास आजान बाहो शाहान शाहो
1: राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान
0: इंद्रान इंद्र बालान बालरंकान रंग कालान काल
1: अनपूत अंग अबा अपांग गातमित अपार गुण गान उदार
0: गुण गण प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मित गत खंड
1: इलस कर्म अदृष्ट धर्म सर्व पनदर अंडन बड
0: चाचरी संतव प्रसाद
1: गोविंदे मोकंदे उदारे अपारे
0: हरियम करियम नामे अकामे पचंग पयात छंद
1: चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने
0: चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
1: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने
0: चाचरी छंद
1: ना सतरे ना मित्रे ना परमंग ना पितरे
0: ना कर्मंग ना काये अजन्मंग अजाये
1: ना चतरे ना मित्रे परे हैं पवित्रे
0: पर दिशे अदिशे अदृशे अकृशे भगवती शांत
1: वै
0: प्रसाद
1: कथरे के आचर देचे के आप पिज पेचे के आ गंज कर में के आप पांच पर में
0: के आ पिज लोके के आ दित सोके के आप दूत वरने के वैभूत करने
1: के राजंग प्रामाक तरम तजा के आसो को वाने के सर्व अपरने
0: के जगतं कृति है के शत्रंग क्षत्री है के ब्रह्मं

0: के सर्वत्र पिछे
1: के सर्वत्र मानिए सदैव अंग प्रधानिए के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए
0: के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने के सर्वत्र इंद्रे के सर्वत्र चंद्रे
1: के सर्वंग कली में के फरमंग फहीमे के आकल अलामे के साहिब कलामे
0: के हुसन अल वजूमा तुम अमर रजुना हमेशा सलामे सली खत्म दामे
1: गरीब शिकस्ते गरीब परस्ते बिलंदल मकाने जमीन अल जमाने
0: कमील तो मामे रजुल नदाने हरि पर जिमे रजा क जकीने
1: अनेक तरंग है अपेद है अपंग है अजीज अल निवास है गरीब अल खराज है
0: निरुक्त स्वरूप है तरमुक्त भूत है पर भुगत प्रवास युक्त सुधा है
1: सदैव अंग स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्व साज है
0: समस्त सलाम है देवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है
1: ओंकार रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
0: त्रवर्गम त्रवादे अगंजे अगाधे सुविंग सर भागे सु सर्व अनुरागे
1: त्रिपोक्त स्वरूप है अशिज है अशुद्ध है के नरकंग पर नाश है पृथ्वल प्रवास है
0: निरुक्त प्रवाह सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है पर युक्त अनूप है
1: निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है पर युक्त अनूप है चाचरी छंद
0: अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है
1: अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है
0: अजय है अभे है अपूत है अतूत है
1: अनास है उदास है अदंत है अबंध है
0: अपक्त है बरक्त है अनास है प्रकाश है
1: निचित है सुनित है अलेख है अदिख है
0: अलेख है अपेख है अड्डा है अगा है
1: असंभ है अगम है अनिल है अनाद है
0: नित न सुनत है अयात है अयाद है
1: चरपट शंत व प्रसाद
0: सर्विंग हंता सर्विंग गंता सर्विंग ख्याता सर्विंग ज्ञाता
1: सर्विंग हर्ता सर्विंग कर्ता सर्विंग प्राण सर्विंग त्राण
0: सर्विंग कर्म सर्विंग धर्म सर्विंग युक्ता सर्विंग मुक्ता
1: रसावल शंत व प्रसाद
0: नमो नाक नाशा सदैव प्रकाशे अनंग सूपे भंग बबूते
1: परमात्म परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बबूते
0: अनंगी आम्य तरभंगे तर कामे नर भंगे स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
1: ना पोत्र ना पुत्र ना सत्र ना मित्र ना तात ना मात ना जात ना पात
0: नरसाकंग सरीक अमितो मीका सदैव प्रभ है अजय है अजा है
1: भगवती शंत व प्रसाद
0: के जहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशा सलाम है समस्त कलाम है
1: के साहेब दिमाग है के हुसन चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है
0: रोजी दहेंद है के राज करेंद है करीमर कमाल है हुसन जमाल है
1: गरीमल खराज है गरीबल निवाज है हरीफल शिकाने है हरासल फिकाने है
0: करम करम प्रणस है सुमल सरनवास है अगंजर गनीम है रजा कर रहीम है
1: समस्तल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग पर नास है बैसल निवास है
0: के सर्वल गोवन है हमेशा रोवन है तमामर तमीजिया समस्तल अजीज है
1: परंग परमीश है समस्तल अदीस है अदेशल अलेख है हमेशल अपेख है
0: जिमनल जमा इमिकल करीमर कुमार के जुर्त जमाल है
1: के अचलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है
0: के मितो पता के आत्म प्रवाह के चलंग अनांग है मितो अपांग है
1: मद पार संत व प्रसाद
0: मन मन प्रणाम गुण गम दाम अरबर गंज हर नर पर पांज
1: अनगन प्रणाम मुझ मन सलाम हर नर खंड वर नर मंड
0: अन पव अनास मन मा प्रकाश गुण गान प्रणाम जल थल मदाम
1: अनशिज अंग आसन अपंग उपमा पार गत मित दार
0: जल थल अमंड जस बेस उपांड जल थल महंत जस बेस बेअंत
1: अन पव अनास त्रितत रास आजान बाहो एक सदा हो
0: ओंकार आद कथनी अनाल खाल खंड क्या गुरबर अकाल
1: कर कर पर नाम चित चरण नाम अनशिज गात आजिज ना बात
0: अन झंज गात अन रंज बात अन टोट पंडार अन ठट अपार
1: आठीच धर्म आठीच कर्म अन बन अनंत दाता महंत हर बोल मना शंत व प्रसाद
0: करनाले है यार काले है खल खंडन है मैं मंडन है
1: जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व बारण है
0: कृत के तरण है जाके कर्ण है मन माने है जग जाने है
1: सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्प

0: करनाकर है बसंबर है सर्वे सर्वे जगदेश्वर है
1: ब्रह्मंड से है खल खंड से है परते पर है करनाकर है
0: जपा जप है थपा अथप है अकीर्ता कृता।

0: नायक हैं।
1: बसंबर हैं, करनाले हैं, निरप नायक हैं, सरपायक हैं।
0: पापंजन है, अरगंजन है, रिप्रतापन है, जप जापन है।
1: अकले कृता सर्वा कृता, करता कर हैं, हरता हर हैं।
0: परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बसे जस के जस है, पुचंग पयात छंद।
1: नमो सूरज सूरज, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे,
0: नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे,
1: नमो राज सिंह ताम सिंह सात रूपे, नमो परम तत्संग अतत्संग स्वरूपे,
0: नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने,
1: नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने,
0: नमो कले कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो
1: अलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बांके,
0: अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक श्री छंद,
1: अजय अले अपे अबे,
0: अबू अजू अनास कास,
1: अगंज अपांज अलख अपाख।

0: बैठा कौन से मिट प्यो संकरी कैठा अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बारा सिख संगरो
1: सकल मलेश करो
0: सोता शरणी परे दिन के दुष्ट दुख तो आय मरे।

0: आखिर ता वेखे सा तू है जिन जग तू
1: पायानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया
0: सरनर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते
1: पाया अमृत गुर कृपा किन्नी सच्चा मन वसाया
0: जन सब तू दो पाए एक वेक प्रसन आया
1: लाभ लो अहंकार चुका सतगुरु पला।

0: पढ़ने गुरु बिन अवर न जाने कोए।
1: नानक सुनो संतो सो शिक्षण मुख होए।
0: जे को गुरते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे।
1: पावे मुक्त ना होर थे कोई पुछो बबेकियां जाए।
0: अनेक जुनी परमावे बिन सतगुर मुक्त ना पाए।
1: फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु शब्द सुनाए।
0: नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए।
1: आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी।
0: बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी।

नानक हर भजमन अंत सहाय हो जन्म जन्म भर मत फिरो मिटे न जमको त्रास कहो नानक हर भजमन निरभय पावें बास जतन बहुत मैं कर रहे हो मिटे न मन को मान दुर्मत सो नानक फदयो राख ले हो भगवान बाल जवानी और बिरध फुण तीन अवस्था जान कौ नानक हर भजन बिन बिरथा सभी मान करण तो सुना कियो पर लोभ कै फंद नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत आंद मन माया मैं रम रहो निकसत नाहिन मीत नानक मूर्त चित्र ज्यो चढ़त नाहिन पीत नर चाहत कछ और की और पई चितवत रठ गौर नानक फांसी गल पर जतन बहु सुके किए दुख कियो न को कहो नानक सुन रे मना हर पावे सो हो जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवे काम झूठे मान कहा कर जग सुपने जो जान इन मैं कष्ट रो नहीं नानक कहो बखान गर्व करत है देखो बिन स छिण मै मीत जे प्राणी हर जस कहो नानक ते जग जीत जे कट सिमरन राम को।

चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी हो मार्ग संसार को नानक तिरने को जो उपज सो बिन सह परो आज का काल नानक हर गुण गायल छाड़ सगल जंजाल दोहरा बल।

एक ओंकार सदगुरु प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग लापय अठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करी पंच रागनी संग विचारे प्रथम भैरवी बिलावली पुण्या की गावे बंगली पुण सलेखी की पे बारी ए भैरव की पंचो नारी पंचम हर दिक्षा सुनावे बंगाल मद माधव गावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भात अष्ट पुत्र भैरव की गावे गायन पात्र द्वितीय मालक उसका लापै संग रागनी पंचो थापै गौण करी अर देव गंधारी गंधारी सीति विचारी तनासरी ए पंचो गाई मल राखो सकसंग लाए मारू मसंग मेवारा प्रबल चंड कौशक भारा खो कट्यो पौर आनंद गाए अष्ट मल को सकसंग लाए उन आयो हंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन ताल मिलावे ते लंगी देव करे आई बसंती संदूर सहाई सरस हीरी लै पार जा संग लाई पांचो यार जा सुरमा नंद पास कर आए चंद्र बिम मंगलन सुहाए सरस बाणो आई विनोदा गावे सरस बसंत कुमोदा अष्टपुत्र मैं

कमल कुसुम चंपक नामा गौरव कणर कल्याण सुपुत्र दीपक जन सामिल श्री राघव गाव पंचो संग बरंगण लाव बरारी करनाटी तरी गौरी गाव आसा बरी ते पाछे सिंधवी लापे श्री राघ सो पंचो थापे सल सारग सागर और गुंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राघ कै गुंड कुंभ मीर खष्टम मेघ राघव गाव पांचो संग बरंगण लावे सोरठ गुण मलारी धुनी पुण गावे आसा गुण गुणे

0: बात रहे जय प्रसाद सुने का नाद
1: जय प्रसाद पिखे विस्मद
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना
1: जय प्रसाद सुसह जय बसना
0: जय प्रसाद हस का चल है
1: जय प्रसाद पूर्ण फले
0: जय प्रसाद परम गत पाव है
1: जय प्रसाद सुसह समावे
0: ऐसा प्राप्त त्याग और कत लागू
1: और प्रसाद नानक मन जागो
0: जय प्रसाद तू पर संसार
1: तेरे पर को मूल मनो सार
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप
1: रे मन मूर तू ताको जप
0: जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे
1: जिसे जान मन सदा जुरे
0: रे प्रसाद तू पावे साच
1: रे मन मेरे तू तां सो राच
0: रे प्रसाद सब की गत होए
1: नानक जाप जपे जप सोए
0: आप जपाए जपे सो ना
1: आप गवाए सर गुण गाओ
0: प्रभु के पाते होए
1: प्रभु
0: के पाते होए प्रगास
1: प्रभु दया ते कमल विगास
0: प्रभु सो पर सन पसे मन सोए
1: प्रभु दया ते मत उत्तम होए
0: सर्वन दान प्रभु तेरी मैं
1: आपो कछु न किन्नो लया
0: जित जित लाभ तित लगे हर नाथ
1: नानक इनके कछु न हाथ श्लोक
0: अगम अगाध पार ब्रह्म सोए
1: जो जो कहे समुक्ता होए
0: मीता नानक बिन बंता
1: ना जानके चर्ज कथा अष्टपदे
0: साध के संग मुखज होत
1: सा संग मल सगली खोत
0: साध के संग मिटे अवमान
1: साध के संग पर के सदियान
0: साध के संग पुजे परम नीरा
1: साध संग सब उतन मेरा
0: साध के संग पाए नाम रतना
1: साध के संग एक ऊपर यतन
0: साध के महिमा बरने को परानी
1: नान साध के सोभा ब्रह्मा है समाने
0: साध के संग गोचर मिले
1: साध संग सदा पर फुले
0: साध के संग विवस पंचा
1: साध संग अमृत रस पुंचा
0: साध संग हुए सब की रेन
1: साध संग मनोहर वेन
0: साध के संग न कतहूं तावे
1: साध संग अस्तर मन पावे
0: साध के संग माया ते पेन
1: साध संग नान प्राप सुख प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन समीत
1: साधु के संग महापनीत
0: साध संग के सुने बैर
1: साध के संग न बिंदा पैर
0: साध के संग नहीं को मंदा
1: साध संग जाने परमानंदा
0: साध के संग नहीं उताप
1: साध संग तजे सब आप
0: आपे जाने साध विड़ाई
1: नान साध प्रभु बने आए
0: साध के संग न कब हुतावे
1: साध संग सदा सुपावे
0: साध संग बस को चल है
1: साधु के संग अजर सहे
0: साध के संग बस एथान ऊंचे
1: साधु के संग महल पहुंचे
0: साध के संग दिले सब धर्म
1: साध संग केवल पार ब्रह्म
0: साध के संग पाए नाम दान
1: नानक साधु के करवाना
0: साध के संग सब कुल उदारे
1: साध संग साजन मीत क्रम निस्तारे
0: साधु के संग सोतन पावे
1: स्तन ते सब को बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा
1: साध के संग सब वसु देवा
0: साधु के संग पाप लायन
1: साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्व थान गम
1: नान साध के संग सफल जन्म
0: साध के संग नहीं कष्ट काल
1: दर्शन पेत होतने हल
0: साध के संग कलुखत हरे
1: साध संग नर पर हरे
0: साध के संग इहा उहा सुहेला
1: साध संग बिशर थर मिला
0: धोई छे सोई फल पावे
1: साथ संग न बिथा जावे
0: बार ब्रह्म से असाध रिद बसे
1: नान कुदरे सा स्मरसे
0: साध के संग सुनो हर नाव
1: साध संग हर के गुण गाओ
0: साध के संग न मन ते बिसरे
1: साध संग सर पर निस्तरे
0: साध के संग लगे पर मिठा
1: साधु के संग कट कर डिठा
0: साध संग पे आज्ञाकारी
1: साध संगत पे हमारे
0: साध के संग मिटे सब रोग
1: नान साध पिटे संयोग
0: साध के महिमा वेद न जाने
1: तिता सुने तिता वखियाने
0: साध के उपमा तेहे गुंते दूर
1: साध के उपमा रही परपूर
0: साध की शोभा का नहीं अंत
1: साध की शोभा सदा व्यंत
0: साध की शोभा ऊंचे ऊंची
1: साध की शोभा तुझते मुझे
0: साध की शोभा साध बने आई
1: नान साध प्रभु फेद न पाई श्लोक
0: मन साचा मुख साचा सोए
1: अवर न पेखे कसविन कोए
0: नान के लक्षण
1: ब्रह्म ज्ञानी हुए अष्टपते
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
1: जैसे जल में कमल लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
1: जैसे सूर सर्व को सुख
0: ब्रह्म ज्ञानी के दिश मान
1: जैसे राय रंग को लागे तुल पवन
0: ब्रह्म ज्ञानी के तीर जे कर
1: जहाँ वस्ता को खोदे को चंदन लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव
1: नान के पाव का सह स्वाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे मैं न लगे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रकाश
1: जैसे तारो पर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही मान
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा
1: मन अपने है सब ते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे
1: नान के प्रताप करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी की ना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ पुरा न पया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समरदासी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टा मत वर्षे
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जूता
0: ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी स्महा
1: ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा
0: ब्रह्म ज्ञानी ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ।

0: संस्कार नाना प्रकार जनता
1: एक और किए चर जीवे
0: एक और गिरी मेर स्वर थीवे
1: एक और जाख किने पिसाच
0: एक और पोत परे सुकर मिल गाज
1: सब ते नेरे सब हूं ते दूर
0: नान का पलपतरिया भरपूर
1: एक और पताल के वासी
0: एक और नरसुर के निवासी
1: एक और जन्म जीवे मर है
0: एक कोट बोझ नहीं फिरे
1: एक और बैठ ही खाए
0: एक कोट काले थक पाए
1: एक और किए तनवंत
0: एक कोट माया में चिंद
1: जह जय पाना तह तह रखे
0: नानू सफल रब के हथे
1: एक और पे वैरागी
0: राम नाम संतन निव लगे
1: एक और प्रभु को खोजंत
0: आत्म में पार ब्रह्म लहंते
1: एक और दसम प्रभु प्यास
0: तिनको मिलयो प्रभु अविनाश
1: एक और मागे सत्संग
0: पार ब्रह्म ते लगा रंग
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न
0: नाम ते जन सदा तन तन
1: एक और खानी हर खंड
0: एक और आकाश ब्रह्मंड
1: एक और होए अवतार
0: कई ज्योत के नौ विस्तार
1: कई बार पसरियो पसार
0: सदा सदा एक एक अहंकार
1: एक और की ने
0: प्राप्त हुए प्रमाय समात
1: काका अंत न जाने कोए
0: अपे आप नान प्रभु सोए
1: एक और पार ब्रह्म के दास
0: तेरे होवत आत्म प्रकाश
1: एक और तात के बेटे
0: सदा निहारे एक और नेत्र
1: एक और नाम रस पीवे
0: अमर पैसा सदी जीवे
1: एक और नाम गुण बगावे
0: आत्म रस सह समावे
1: अपने जान को सा सा समारे
0: नान कोए परमेश्वर के प्यारे श्लोक
1: कर्ण कान प्रभु एक है
0: दूसरे नाही कोए
1: नानक तिस बलिहार ने
0: जल थल मैयल सो ए अष्टपदे
1: कर्ण कर अवन करने जोग
0: जो दिस पावे सोई होगा
1: जिनमें थापो था पनहारा
0: अंत ने कुछ पहरा वारा
1: हुक्मे तारा दर रहावे
0: हुक्मे उपजे हुक्म समावे
1: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार
0: हुक्मे अंक रंग प्रकार
1: करका देखे अपनी बढ़ियाई
0: नान समय रह समाये
1: पर पावे मानु घट पावे
0: पर पावे ता पाथ तरावे
1: पर पावे बिन सांस तेरा खे
0: पर पावे ता हर गुण पाखे
1: पावे ता पत दोदारे
0: आप रे अपन बिचारे
1: वासरिया का आप स्वामी
0: खेले बिकसे अंतर यमे
1: जो पावे सो कार करावे
0: नान दृष्टि अवर न आवे
1: कहो मानुख ते क्या हो आवे
0: जो दिस पावे सो एक करावे
1: इसके हाथ होए ता सब किसे ले
0: जो दिस पावे भी किसे कोई करे
1: अनजानत भी ख्या मैं रचे
0: ये जान अपना बचे
1: पर में भुला जिस तावे
0: निमुख में चार कुंड फिर आवे
1: और कृपा जैसे अपनी भक्ति
0: नान तेजन नाम मिले
1: छिन में नीच कीट को राज
0: पार राम करे बनवाज
1: जाका दिस को सुनावे
0: ते सत्काल दा दिस परटावे
1: जाको अपनी करे बख्शीस
0: ताका लिखा न गणे जगदीश
1: जियो पिणसा तेरी रास
0: घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश
1: अपनी बनती आप बनाई
0: नानक जीवे देख बढ़ाए
1: इसका बाल ना ही सहात
0: कर्ण करावण सब को नाथ
1: आज्ञाकारी वपरा जियो
0: जो दिस पावे सोई फंथियो
1: ऊंच नीच में बसे
0: कबू सोग हर करंग से
1: कबू नेंद चंद व्यवहार
0: कबू उभ कश प्याल
1: कबू बेता ब्रह्म विचार
0: नानक आम लवण हर
1: कबू नृत्य करे भोपाल
0: कबू सोए रहे दिन रात
1: कबू महा क्रोध विकराल
0: कबू सर के हो तरवाल
1: कबू होए वह बड़ राजा
0: कबू पखारी नीच का साजा
1: कबू आप कीर्त में आवे
0: कबू पला पला कहवे
1: जो प्रभ राखे तिभी ही रहे
0: बर बर शान नानक सच कहे
1: कबू होए पंत करे बखियान
0: कबू मौन तारी लावे ध्यान
1: कबू तट तीर्थ स्नान
0: कबू से साधक मुख ज्ञान
1: कबू कीट हस पंग होए जिया
0: अंत जोन पर में परमिया
1: नाना रूप जो सुभागी दिखावे
0: जो प्रा पावे तिबे नचावे
1: ज्योतिष पावे सोई होए
0: नानक दूजा अवर न कोए
1: कबू सा संग ते पावे
0: उस स्थान ते बहर न आवे
1: अंतर होए ज्ञान प्रगास
0: उस स्थान का नहीं विनाश
1: मानता नाम रते करांग
0: सदा बसे पार ब्रह्म के संग
1: जो जल में जल आए खटाना
0: त्यों जो ते संग जो समाना
1: मिट गए गमन पाए

0: तके को कैसे गवे।
1: आपस खोजो कर आपस खोजो भला कहावे,
0: तिसे भलाई निकलावे।
1: सर्व की रेंजा का मन होए,
0: को नानक ताके निर्मल सोए।
1: जब लग जाने मुझ ते कछ होए,
0: तब इस कोस नाही कोए।
1: जावे जाने में किस करता,
0: तब लगन जोन में फिरता।
1: जाता रे को भरी मी,
0: तब लग न चल नाही चित।
1: जब लग मोह मग संग मलाए,
0: तब लग तारु राय देश जाए।
1: जब कृपा ते बंधन टूटे,
2: गुर प्रसाद नानक होश उठे।
1: सहस खटे ला कोरतावे,
0: त्रिवतावे माया पाछे पावे।
1: मन को भिक्षा के करे,
0: ना त्रिवतावे खपा मरे।
1: बिना संतोख नहीं को राजे,
0: सुमन मनोरथ मिथे सब काजे।
1: नाम रंग सब सुख होए,
0: बट भागे किसे प्राप्त होए।
1: कान कर अपने आपे आप,
0: सदा सदा नानक हर जाप।
1: कान कर अपने कर निहार,
0: इसके हाथ कहाँ विचार।
1: जैसे देश के तैसा होए,
0: आपे आप प्रभ सोए।
1: जो किश किनो सो अपने रंग,
0: सब ते दूर सब के संग।
1: मुझे देखे कर विवेक,
0: आपे एक आपे अनेक।
1: मेरे नबे से आपन जाए,
0: नानक सधे रह समाए।
1: आप देश समझे आप,
0: आपे रचिया सब के साथ।
1: आप की नो आप बिन विस्तार,
0: सब कुछ उसका करने हर।
1: उसते पेन को हो किश होए,
0: कांत नंतर एक के सोए।
1: अपने चलते आप करने हार,
2: कौते करे रंग अपार।
1: मन में आप मन अपने माहे,
0: नानक कीमत कह न जाए।
1: सात सात सात प्रभु स्वामी,
0: गुरु प्रसाद के नेम के अन्य।
1: सात सात सात सकीना,
0: ओठ देख ने बिरले जीना।
1: पला पला पला तेरे रूप,
2: अस सुंदर अपार है नूप।
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी,
0: कड़ कड़ सुनी सरवण मुखिया ने।

0: अष्टपदे
1: मानव की टेक वृथि सब जान
0: देवन कोई के भगवान
1: जिसके दिए रहे अगाए
0: वर्ण कृष्णा लगे आए
1: मारे रखे को आप
0: मान के कुछ नहीं हाथ
1: जिसका हुक्म बोझ सुख होए
0: जिसका नाम रखंठ परोए
1: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए
0: नाम के बिघ्न लगे कोए
1: उस्तत मन में कर्ण रंग का
0: कर्मन मेरे साथ विहार
1: निर्मल रसना अमृत पियो
0: सदा सहला कर ले जियो
1: नैनो पेक ठाकुर का रंग
0: से सब संग
1: चरण चलो मार गोविंद
0: मिठे पाप जपिए हरबिंद
1: कर हर कर्म श्रवण हर कथा
0: हर दरगे नाम को जल मथा
1: बड़ पागीते जन जग माहे
0: सदा सदा हर के गुण गाए
1: राम नाम जो करे विचार
0: सेतन वंतक नि संसार
1: तन मुख बोले हर मुखी
0: सदा सदा जानते सुखे
1: एको एक एक पिछाने
0: एतत के यो सब जी जाने
1: नाम संग जिसका मन माने
0: नानक तिने निरंजन जाने
1: गुर प्रसाद अपन आप सुजे
0: जानो तृष्णा मुझे
1: साध संग हर हर जस कह
0: सर्व रोग ते हो हर निरत
1: नंदन कीर्तन केवल बखान
0: ग्रस में सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आशा
0: जिसके कटिए जम की फसा
1: पार भ्रम की जिस मन भूख
0: नानक तिस न लागे दुख
1: जिसको हर पर मन चित्त आवे
0: सो संस हिला नहीं डलावे
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे
0: सो सेवक को किसे डरे
1: जैसा सात है सा दृष्ट आए
0: अपने कार्य में आप समय
1: सोधत सोधत सोधत सी
0: गुर प्रसाद तब सब जिया
1: जब देखो तब सब किस मूल
0: नानक सो सुखम सोई अस्तुल
1: न किस जन्म न किस मरे
0: आपन जानता आप ही करे
1: आवन जावन दृष्टान दृष्ट
0: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
1: आपे आप सगल में आप
0: अनक युक्त रहे थाप थाप
1: अब ना सी ना ही किस खंड
0: तार तार रे ब्रह्मंड
1: अलख पे पुर पर तार
0: आप ज पाए त नानक जाप
1: जिन प्रभ जाता सो शोभा बंत
0: नानक संसार भोले तन मंत
1: प्रभ के सेवक सगल उदाहरण
0: प्रभ के सेवक दुख विसरण
1: आपे मेल लय कृपा
0: गुरु का शब्द पै निहाल
1: उनकी सेवा सोई लागे
0: जिसमो कृपा करे बड़ पावे
1: संतिस बिन नाम जपत पावे विश्राम
0: नानक के पुर को उत्तम कर मान
1: जो किछ करे सो प्रभ के रंग
0: सदा सदा उसे हर संग
1: सहज सपाए होवे सो होए
0: करने हर पिछाने सोए
1: प्रभ का किया जन मीठ लगन
0: जैसा सात ऐसा
1: जिस ते उपजे तिस माहे समा
0: होए सो

0: का नेत्र फोर
1: इसका मंत्र जाने होर
0: आनंद रूप मंगल सब जाकर
1: सर्व सुख सुने करता के
0: राज में राज योग में जोगी
1: तामे फिर सर्व रस में भोगे
0: त्याए त्याए भगतां सुख पाए
1: नानक के पुरखा के नेत्र न पाया
0: जाकी लीला कीमत नाही
1: सगल देव हरे अवगाहे
0: पिता का जन्म के जाने पूर
1: सगल प्रोहि अपने सूत
0: समत ज्ञान ध्यान जिन दे
1: जन दास नाम ते आवे से
0: तेह गुण में जा को परमाए
1: जन्म रे फिर आवे जाए
0: ऊंच नीच तिसके स्थान
1: जैसा जन आवे तैसा नानक जान
0: नाना रूप नाना जाके रंग
1: नाना पे करे एक रंग
0: नाना विद की नो विस्थान
1: प्रभु नासी एक अंकार
0: नाना चलत करे किन माहि
1: हो रहे हो पूरन सब ठाए
0: नाना विद कर बणत बनाए
1: अपने कीमत आपे पाए
0: सब घट तिसके सब तिसके ठाओ
1: जब जब जीवे नानक हर
0: नाम के तारे सगले जंत
1: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
0: नाम के तारे सिमृत वेद पुराण
1: नाम के तारे स्वर्ण ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आकाश पाताल
1: नाम के तारे सगल आकार
0: नाम के तारे पुरी आसा पवन
1: नाम के समुद्र सुन सरवण
0: कर कृपा जिसे अपने नाम लाए
1: नाम चौथे पद में सोजन गत पाए
0: रूप सत जा का सत स्थान
1: और सत के बल प्रधान
0: करतूत सत सत जा की बान
1: सर पुरुषा माहि समाने
0: सत कर्म जा की रचना सत
1: मूल सत सत उत्पत्त
0: सत करनी निर्मल निर्मल
1: जिसे बजाए इसे सब पले
0: सत नाम प्रभु का सुखदाय
1: विश्वास सत नाम गुरते पाए
0: सत वचन साधु उपदेश
1: सत जन जाके हृदय प्रवेश
0: सत नित बुझे जे कोई
1: नाम जपता की गत होए
0: आप सत किया सब सत
1: आपे जाने अपने मितगत
0: जिसकी श्रेष्ठ सु करने हार
1: अब न भूल करते विचार
0: करते की मित न जाने की
1: नान गुरु पावे सो बरतिया
0: विस्मन विस्म पै विस्मा
1: जय बुझिया किस आया स्वाद
0: प्रभ के रंग राज जन रहे
1: गुर के वचन पदार्थ ले
0: कोई दाते दुख काटन हार
1: जाके संग तरे संसार
0: जन का सेवक सोबड भागी
1: जन के संग एक लिब लगे
0: गुण गोविंद कीर्तन जन गा
1: गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक
0: आद सच जुगाद सच
1: है पे सच नानक होसे पे सच अष्ट दे
0: चरण सत सत परसन हार
1: पूजा सत सत सेव धार
0: दर्शन सत सत पेखन हार
1: नाम सत सत त्यावन हार
0: आप सत सत सब धारी
1: आपे गुण कर
0: शब्द सत सत प्रभक
1: सत सत सत जय सुनता
0: बुझन हार को सत सब होए
1: नानक सत सत प्रभ सोए
0: सत स्वरूप हृदय जन माने
1: कर्म करम ते मूल पहचानिया
0: जा के हृदय विश्वास प्रभाए
1: तत ज्ञान तिस मन प्रटाया
0: भय ते निरपो होए बसंत
1: जिस तो उपजे तिस माहि समाना
0: वस्त महले वस्त गडा
1: काको पे न कहना जाए
0: बुझे बुझन हार बिबेक
1: नारायण रे नानक के
0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
1: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
0: ठाकुर के सेवक के मन प्रति
1: ठाकुर के सेवक निर्मल
0: ठाकुर को सेवक जाने संग
1: प्रभु का सेवक नाम के रंग
0: सेवक को प्रभु पालन हार
1: सेवक के रखे निरंकार
0: सो सेवक जिस दया प्रभु तार
1: नानक सो सेवक सास सास स्मरे
0: अपने जन का पर्दा ढके
1: अपने सेवक के सर पर रखे
0: अपने दास को दे बढ़ाई
1: अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक की आपत रखे
1: ताकि गत मत कोई न लाखे
0: प्रभु के सेवक को न पहुंचे
1: प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे
0: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
1: नानक सो सेवक दया दृष्टाया
0: नीकी कीरी मैं कल रखे
1: पास मरे लश्कर कोट रखे
0: जिसका सास न काट त्याग
1: ताको राख दे कर हाथ
0: मानस जतन करत बो पांत
1: तिसके करत रिथे जात
0: मारे न रखे अवर न कोई
1: सर्वनी का रखा सोए
0: काहे सोच कर हे रे पण
1: जब नानक प्रभु अर्थ बड़ानी
0: बारंबार बार प्रभु जपी
1: पी अमृते मन तंत्र पिए
0: नाम रतन जिन गुरमुख पाया
1: उसको शबर नाहि लिसाया
0: नाम तन नामो रूप रंग
1: नामो सुख नाम का संग
0: नाम रस जो जन तृप्त मन
1: तन नामे नाम समने
0: उठत बैठत सोबत नाम
1: और नानक जन के सत्काम
0: बोलो जस जे बादन रात
1: पर अपने जन की नींद
0: करे भक्त भक्त आत्म कह चार
1: पर अपने जो रहे सुवाई
0: जो हुआ हो बसो जाने
1: पर अपने का हम जाने
0: इसकी महिमा कौन बखान
1: जिसका गुण के एक न जाने
0: आठ पहर प्रभ से हजूरे
1: और नानक से जन पूरे
0: मन मेरे तिन की ओट ले
1: मन तन अपना तिन जन दे
0: जिन जन अपना प्रभु पिछाता
1: सो जन सर्व सो का दाता
0: तिसकी ਸ਼ਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ,
1: ਜਿਸਕੇ ਦਾਸਾ ਪਾਵ ਮਟਾਵੈ,
0: ਆਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਛਾਵੈ,
1: ਤੇ ਜਨ ਕੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ,
0: ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ,
1: ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ ਸਲੋਕ,
0: ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ,
1: ਸਤ ਗੁਰ ਦਿਸ ਕਾ ਨਾਉ,
0: ਜਿਸਕੇ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਧਰੈ,
1: ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੇ ਪਤਪਾਲ,
1: ਸੇਵਕ ਹੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ,
0: ਸਿੱਖੀ ਗੁਰਦਰ ਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ,
1: ਗੁਰ ਬਚਨੇ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੇ,
0: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਬੰਧਨ ਕਟ,
1: ਦੁਰਗਾ ਸਿੱਖੇ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੇ,
0: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਧੰਨ ਦੇ,
2: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਟਪਾਦੀ
1: ਹੈ,
0: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰ,
1: ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਵਾਰੇ,
0: ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ,
1: ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੇਂ ਸਹਿ,
0: ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੇ,
1: ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਤਿ ਹੋਇ,
0: ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ,
1: ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਜ ਰਾਸ,
0: ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਮ,
1: ਜਿਸਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੇ,
0: ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ,
1: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਲਬ,
0: ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਨ,
1: ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਾਜਨ,
0: ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ,
1: ਅਨਕ ਵਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਨ ਜਾਓ,
0: ਸੰਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ,
1: ਆਠ ਪੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਤਾ,
0: ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ,
1: ਇਕੇ ਆਤਮੈ ਇਕ ਸ਼ਰਮ,
0: ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ,
1: ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਭਾਗੀ ਪਾਈ,
0: ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ,
1: ਪਾਸਾ ਚਰਨ ਨਿਰਮਲੀ,
0: ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਵੈ,
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੈ,
0: ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ,
1: ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਧਿਆਨੇ,
0: ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ,
2: ਅਮਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ,
0: ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ,
1: ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਜਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ,
0: ਜੇ ਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ,
1: ਸਤਿ ਪੂਰਨ ਪੂਰਨ ਬਵੇਕ,
0: ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ,
1: ਆਗਮ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਵਾਣੀ,
0: ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ,
1: ਨਾ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਈ,
0: ਆਨਕ ਭਗਤ ਬੰਦਨ ਨਿਤ ਕਰੈ,
1: ਜਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰੈ,
0: ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ,
1: ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ,
0: ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋ,
1: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਏ,
0: ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾ,
1: ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣ ਦਾਸ,
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ,
1: ਸਚ ਉਪਦੇਸ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ,
0: ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੈ,
1: ਮਨ ਮੇ ਰੱਖੇ ਹਰ ਹਰ
0: ਏਕ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ,
1: ਨਾਨਕ ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਖ ਦੇ ਨਸੈ,
0: ਤਪਤ ਮਾਹੀ ਠਾਂਡ ਵਰਤ,
1: ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਦੁਖ ਨਾ ਠੇ ਪਾਈ,
0: ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਧੇ,
1: ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ
0: ਭਉ ਚੁਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ,
1: ਸਗਲ ਵਿਆਧ ਮਨ ਦੇਖੈ ਨਸੈ,
0: ਜਿਸਕਾ ਸਾਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ,
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮਰਾਰੇ,
0: ਤਿਤ ਪਾਈ ਚੁਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਮ,
1: ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾ ਸਰਵਣਾ,
0: ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀਓ,
1: ਕਰਿਆ ਤਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹਿ,
0: ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਏ,
1: ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ,
0: ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋ,
1: ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਇ,
0: ਪੋਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ,
1: ਵੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ,
0: ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰਿ,
1: ਅਨਕ ਵਾਰ ਨਾਨਕ

0: पाप समित
1: कारण
0: कारण सो प्रभ समरत
1: नाम
0: संचो हो वो भगवान रखो मन मन
1: सर्व रोग नानक मिट जाए
0: जिस तन को चार कुंठ उठता
1: सो तन हर सेवा ते पावे
0: जिसो को नित बाछे मी
1: सो सुख साधु संग परिता
0: जिस सोबा को करे परिकर्म
1: सा सोबा पय हर के शरण
0: अन को पावी रोग न जाए
1: रोग मिटे।

0: भंडार ना
1: सेवर सेवर सदा सुख
0: पाओ भोबिन से पूर्ण होया
1: पास पाए आत्म प्रकाश
0: सित कर जाए बसे अविनाश
1: कौन नानक काटे जम फसे
0: तत विचार कहे जन सच
1: जन मरे सो कच्चो कच्चा
0: आवा गवन मिटे प्रभु से
1: आप ध्यान शरण कर देवे
0: यो रतन जन्म का होए उदार
1: हर सिमर प्राणे आधार
0: मन को पाप ना छूटन हारे
1: सेवर शास्त्र वेद विचारे
0: हर की भक्त करो मन लाए
1: मन बस्त नानक फल पाए
0: संग न चालस तेरे तन
1: तो के पटावे मूर्ख मना
0: सोत मीत कुटंबर बनता
1: इते कौतम कमण सनाता
0: राज रंग माया विस्तार
1: इते कौम कमण छटकार
0: आस हस्ती रथ सवारी
1: उठा डंप के उठ पा सारी
0: जिन दिए तिस बुझे ना बिगान
1: नाम सार नाम पिशाना
0: गुर की मत्तु ले यान
1: भक्त बिना वो डुबे सियाने
0: हर की भक्त करो मन मीत
1: निर्मल होए तुम्हारो चित
0: चरण कमल रखो मन माहि
1: जन्म जन्म के किल बिजाए
0: आप जपो अवरा नाम जपाओ
1: सुरत कहत रहत गत पावो
0: सार पूत सत हर को नाम
1: सह सवाय नानक गुणाओ
0: गुण गाव तेरी उतरस मैं
1: वेण सजाए हमें में फैले
0: ओहे अचिंत बसै सुख
1: नाम सास कर रासा नाम सुनाल
0: चार सियान पसगली मना
1: सास संग पावे सच कना
0: हर पूंजी संच करो व्यवहार
1: इया सुख धर के चेतार
0: सार में निरंतर एको देख
1: कौन नानक जाके मस्त खिलेख
0: एको जप एको सा लाए
1: एक समर एको मनाए
0: एक स्के गुण गाओ अनंत
1: मन तन जापे एक भगवंत।

0: को आधार
1: नानक मांगे ना परमसर
0: रब की दृष्ट महासुख होए
1: हरस पावे बिल्ला होए
0: जिन चाख्या से जन तृप्तान्ने
1: कोर कोठने इंडलने
0: पर परे परे प्रेम रस रंग
1: उपजे चाव साथ के संग
0: परेशान आन सब त्याग
1: अंदर प्रकाशन दिले लागे
0: बड़ पागी जपिया प्रभ सोई
1: नानक नाम रखे सुख होए
0: सेव की मनसा पूरी पई
1: सतगते निर्मल मत लई
0: जन को प्रभ होयो दयाल
1: तीनों सदा निहाल
0: बंधन काट मुक्त जन पया
2: जन मन दुख प्रभ गया
0: इस पुन्नी सरदा सपूर
1: ऐसा संग जो

0: अगन में रख
1: गड़बड़ छाक बिलाला थे
0: सो क्यों बिसरे जे बिकते काट
1: जन जन का टूटा गंडे
0: और पूरे तत एह बुझाया
1: पर अपना नाम के अंत
0: साजन संत करो हे काम
1: आ त्याग जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो
1: आप जपो अपना नाम जपावो
0: भक्त पाए तरिए संसार
1: बिन भक्ति तनु शिशार
0: सर्व कल्याण सुख निध नाम
1: मूर्त जात पाए विश्राम
0: सगल दुख का होवत नाश
1: नानक नाम जपो गुणदास
0: उपजी प्रीत प्रेम रस चाव
1: मंदन अंतर
0: नेत्रो पेक दर सुख होए
1: मन से साचरण तोए
0: भाग जना के मन तन रंग
1: बिरला को पावे संग
0: एक बस दी जेकर मैं
1: गुरु प्रसाद नाम जप लिया
0: ताकि उपमा कहीं न जाए
1: नानक रहया सब समय
0: प्रभ बख्शंद दीन दयाल
1: भक्त बशर सदा कृपा
0: अनाथ नाथ गोविंद गोपाल
1: सर्व कटा कर कृपाल
0: आद पर कारण करता
1: भजन के प्राण
0: जो जो जपे सो होए पुनी
1: पद पाए लावे मन ही
0: हम निर्गुण यार नीच अजान
1: नानक तुम्हें शरण पर भगवान
0: सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए
1: एक निम हर के गुण गाए
0: अनेक राज भोग बढ़ियाए
1: हर के नाम की कथा मन पाए
0: बहु भोजन का पर संगीत
1: रसना जपते हर हर नीत
0: भली सो करनी शोभा तनवंत
1: हृदय से पूर्ण गुरमंत्र।

0: अपने,
1: जब अकारे कृष्ण दृष्टि
0: पाप हम तब कहते हो,
1: जब तारी अपन सुन समाज,
0: तब बैर विरोध के संग कमाते,
1: जब इसका वर्ण चिन्ह जप,
0: तब हर शोको किसे व्याप्त,
1: जब अपन आप अपार ब्रह्म,
0: तब मोह कहां किस होवत परम,
1: अपन खेल आप भरतीजा,
0: नाने करने हरन,
1: जब होवत प्रभ केवल तनी,
0: तब बंध मुक्त को किसको गनी,
1: जब एक कहर अगम अपार,
0: तब नरक स्वर्ग कौन तार,
1: जब निर्गुण प्रभ से
0: सुपार, तब फिर शक्त हो के ठाए,
1: जब आपे आप अपनी ज्योत,
0: तब कौन डर कवन कदरे,
1: अपन चल तब करने हार,
0: नानक ठाकर अगम अपार,
1: अपना शीश के अपन आस,
0: जन मन को कहां बनस,
1: जब पूरन करता प्रभ सोए,
0: तब जम की त्रास को के सोए,
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका,
0: तब चित्र बुद्ध के पूछ लेखा,
1: जब नाथ निरंजन अगोचर घात,
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे,
1: अपन आप ही अचरज,
0: नानक अपन रूप आप ही अपरज,
1: जय निर्मल पुरख पुर पत तोता,
0: जय बिन मैल को क्या तोता,
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण,
0: जय कौन कुमार कौन अभिमान,
1: जय स्वरूप केवल जगदीश,
0: जय शल छल लगत को पीस,
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे,
0: जय किसे पू कम त्रितावे,
1: कर्ण करावन करने हार,
0: नानक करते का नाही समावे,
1: जब अपनी शोभा अपन संग बना,
0: तब गमन माए भाव मित्र सुत,
1: जय सर्व कला आप पेपर।

0: तेन देख्या जिसे आप दिखा
1: सो
0: अंतर सो बाहर अनंत धर्म माए आकाश
2: पयालोक पूर्ण प्रतिपाल
0: मंतिन पर्वित है पार ब्रह्म
1: जैसे आज्ञा तैसा कर्म
0: पौन पानी बह संतर माहे
1: चार कुण जैसे समाए
0: दिसते पिन नहीं को ठाओ
2: गुर प्रसाद नानक
1: सुखाओ
0: वेद प्राण सिमरत में दे
1: सचे पूर्ण खतर में एक
0: वाणी प्रभु की सबको
1: बोले आप डोल न कहो डोले
0: सर्व कलाकार खेले खेल
1: बोलना पाइए।

0: का पेखन सब ब्रह्म
1: संत जना के हृदय सब
0: संत जना सुने शुभ बचन
2: सर्वे आपे राम रचन
0: जिन जाता तिसकी ये रहत
2: साध बचन साधु सब
0: जो जो होए सोई सुख मन
2: नानक रावण हर परम जन
0: अंतर बसे बार पियो
2: नानक दर्शन सम होए
0: आप सत किया सब सत
2: तिस प्राप्त सले उत्पत
0: तिस पावे ता करे विस्तार
2: तिस पावे ता एकंकार
0: मन कला लखी न जाए
2: जिस पावे तिस रहे मिलाए
0: गवन निकट कवन कही है दूर
2: आपे आप पर
0: अंतर्गत जिस आप जनाए
1: नानक जन आप
0: सर भूत आप बरतार
1: सर्व नैन आपे खनहारा
0: सगल समग्री जाका तना
1: आपन जस आप ही सुना
0: आपन जानी खेल बनाए
1: आज्ञाकारी किन्ने माया
0: सबके मादा लिप्तो रहे
1: जो किस कहना सो आपे

आसन पूजो सदा हमारे पच्छा सिरियस तजु करियो रक्षा राख लियो मोय रखन हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा भक्तर काल पाए शिवजु अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाश।

महामूर्ख पेदन महादेव को कैद सदा शंकर का आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पहन पहन तो तुमरा लखा न जाए पसारा के विद सजा प्रथम संस एक रूप अनूप स्वरूप रंग पहो राव के अंडर जे रज से तज कीने उत्पज खान बहोरत कहूं फूल राजा बैठा कहूं सिमट पे शंकर सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संग दोष्ट जिते उठ बातो तपाता सकल मलेश करो रण जे अस्त तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुम पौरख जबन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब जो कल को एक बार त्याय ताके काल निकट नहीं तक्षा होए ताई सब काला दुष्ट रेष्ट रे तत् कृपा दृष्टन जाए नियर्यो ताके ताप तनक मो रेद